आज खिन्न दुखियारी क्यों है मां, आज यूं हारी हारी क्यों है मां, तेरे आंसुओं के खारेपन में ये कड़वाहट कैसे आई। शायद हम ही हैं जिसने तेरी ऐसी हालत बनाई।

सवाल है वसल पर, मिलने के सवाल, मिलने की जब रिक्वेस्ट की, डेट मांगी कि लेट्स मीट समवेयर, सवाल है वसल पर उनको उदू, उदू है आपका राइवल जो है, कंपटीटर, हर फिल्म में एक जो विलन होता है वो उदू होता है, दुश्मन को भी कहते हैं उदू, सवाल है वसल पर उनको उदू का खौफ है इतना,

0: प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। सीताराम, आई एम पंडित शिवानंद राधे महाराज आस्किंग यू द व्यूअर्स एंड द लिसनर्स ऑफ रेडियो एंड टीवी जागृति टू जॉइन अस एवरी वेंसडे फ्रॉम 5 to 6 PM वेयर वी स्पीक अबाउट द ग्लोरीज ऑफ श्री कृष्ण भगवान ऑन अवर प्रोग्राम कृष्ण अर्पणम। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।
1: Discover the vibrant world of Fabinet Expo, your gateway to exquisite crafts, fashion and home decor. Dive into exclusive deals and experience the essence of India all under one roof. Visit the Fabinet Expo opposite Medford Gas Station in Chiguanas. Bring home something special today.
2: Jason Kalu is on.